तू, तू मेरा पगवट प्राण। मैं तेरी पग बन ली है, तू मेरी पग बन ली। ते सिर ते बनी पग नू इज्जत भी समझिया जांदा है कि आज तू तेरी इज्जत मेरी है, मेरी इज्जत तेरी। जदू भी कोई प्राब

ठेक है, एक बादशाह है, ओदे सिर ते भी पग है, एक फकीर है, ओदे सिर ते भी पग है, पर उची पग फकीर दी है, क्योंकि बादशाह कई बारी जुलम भी करदा है, ते जहांगीर ने जड़ी पग बनी, जेड़े तख्त ते बैठा उस तख्त नू अपने पुत्र दे खून दे नाल धोता।

उसने किया, सामने चला जा। बादशाह दा तंबू सामने लग गए, ए सिख तुरदा तुरदा जहांगीर दे तंबू विच चला गया। पैरां विच जुतियां बाहर ला दितियां, तीन पैसे पल्लियों खोल के हाथ विच फड़ ले नी। जहांगीर अपने पलंग ते बैठा है, कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नूं खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकिया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे बादशाह मेरा जन्म मरण सवार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया, ते नाले किया, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा। हां जे तू कवें हीरे जवाहरात महल माड़ियां

बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण सवारन वाला दूसरे तंबू विच है, मेरे कोलों हाथी घोड़े मांग हीरे जवाहरात मांग जो मैं दे सकना। ओकाई कहन लगा मैनू माया नहीं चाहिए, मैनू ते पर

एक आई सिख वापस मुड़िया जहांगीर दे कोल आया जेड़े तीन पैसे रख के मथा टेकिया सी वो तीन पैसे चुप के ते फिर बाहर निकल गए। जहांगीर हैरान हो गए। अपनी बेगम नूर जहां नूं कहन

दुनिया मेरे को डरदी है कि मैं बादशाह, पर वो डरदे ने जिहड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पे आ। गुरु हरगोबिंद साहब अपने आसन ते बैठे ने, संगता बैठिया ने ते कीर्तन हो रहे। तंबू च पैर पाया मन खिचिया गया, क्यों महापुरुषा नु मिलिए ता मन जिहड़ा है वैराग विच आ जांदा है, श्रद्धा विच आ जांदा है। किस दुनियावी आदमी नु मिलिए ते मन विच प्यार नहीं आंदा। इस सिख ने गुरु साहिबां दे दर्शन कीते, कहण दी लोड़ ही ना पई कि जन्म मरण सवार दियो। साहिबां दे चरणां ते वो तीन पैसे रख के मत्था टेकिया, बिना मंगिया सब कुछ मिल गया। हुण फैसला सुनन वालिया ने करना है कि पग किहदी उच्ची। एक पासे बादशाह है उहदे सिर ते भी पग है, एक पासे गुरु है उहदे सिर ते भी पग है। पर पगां विच फर्क ए, एक पासे जुलम हुंदा है और एक पासे प्यार वंडिया जांदा है। इस वास्ते मीर अब्दुल्ला ते नथा मल ढाडी कहंदे ने, ऐ गुरु हरगोबिंद साहब पग जांग

मौत तो डर नहीं लगता, रोना इस करके आ गया कि दुनिया विच मैं पहला आया सी, तू मेरे बाद। मेरा हक बनदा पहला मैं शहीद होवां,

बड़े श्रद्धालु सन जिन्हां दा नां गनी खां ते नबी खां सी। दोनों भरा गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल आए, कहन लगे महाराज बड़ा जुलम होया है, आप जी दे पुत्र शहीद हो गए, आनंदपुर साहब फुस गए, सिख कोई तुहाडे नाल नहीं, कल्ले हो। महाराज जे साडी गल मनो, औरंगजेब दे नाल साडी बड़ी जान पछाण है, वो साडी गल मनदा है, जे कहो ते उहदे नाल तुहाडी सलाह करा दी। गुरु साहब जी कहन लगे शर्त, कहन लगे महाराज शर्त तां इहो होवेगी

मैं भी तुहाडे नाल प्यार करना, पर मैं उस बादशाह दे अगे सिर नहीं झुकाना। हार मान लवा, अपनी पग झुका दे आ, एक बादशाह दे अगे सुलाह कर लवा, यह कह के मैं हार गया, पर मैं हारिया नहीं। मेरे पुत्र शहीद हो गए, कोई सिख मेरे कोल नहीं, घोड़ा भी मेरे कोल नहीं सवारी करने वास्ते, पर फिर भी मैं हार नहीं मन्नी ते ना ही मननी। क्यों? जिसनू तुसी अल्लाह कहंदे हो, कोई उसनू अल्लाह कहंदा है, कोई कुछ कहंदा है, वो अकाल पुरख, वो मेरे नाल है, सच मेरे पल्ले है। मैं हारिया नहीं, ना मैं हार मननी, ना मैं पग चुकानी, ते ना ही सहबा ने वो पग चुकन दिती। आओ भाई, गुरु साहब जी कहंदे ने सिर चुकाना है अकाल पुरख अगे।

0: अंतना पापत देव सबे मुनि इंद्र महाशिव जो करी तेरा अंत न पारा बारिया
1: अंत न पावत देव सबे
0: अंत न पावत देव सबे।

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भक्त रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देण वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ, ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत पे, किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। यह सवाल उठाया है, किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा, किस टेक्निक दे द्वारा, किस विधि दे द्वारा, किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत से

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी च आखते हैं कि जो साधुओं का संग है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्हां ने ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जिन्हां ने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ऐ जिहड़े कच्चे हन इन्हां ने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं भटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहानां दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड्डा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जिहड़ियां हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इसनू वरत लीए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचड़ा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज होने हाँ, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हाँ, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंग तह जाए। माखी चंदन पर हरे, जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखदे हां, ते नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करदे हां। भगत जी कहिंदे हन, मेरियां निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी, कहिंदे सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनदी तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटे। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिटे, डिले नहीं कीते। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वो कहिंदे जिहड़ी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनू सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। Whatever you desire, you shall receive that reward, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karta hai, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aavai, mohe anth liptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो।

लेकिन हैरानी की गल यह है जितना असी जिंदगी ज्यादा सुख चाहते हाँ जितना असी सुखी रहने की कोशिश करते हाँ आउटकम जो है वह कुछ होर है जिंदगी उतना ही वधेरे दुख आई जाता है उतनी ज्यादा पेन और पीड़ा साड़ी जिंदगी

मैं अजिहे सुख तो की लेना है जेड़ा सुख नालों वधेरे दुख लेके आई जा रहा है। सुख मांग दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगिया भावे। वो सुख मैनू अच्छा नहीं लगता जेड़ा वधेरे दुख लेके आ रहा है। तो गुरु साहब भी अपनी बाणी दी इस पंक्ति दे विच ए कहंदे ने, ऐ संतो ऐसे पुरुषों जिन्हां दे पास के इनसाइट है, ऐसे महापुरुषो ऐसे सतपुरुषो मेरे ते बख्शिश करो, कोई मेनू अजिहा सुख दसो, सो सुख मोको संत बतावो, कोई मेनू ऐसी कंफर्ट दसो जिस दे नाल तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। आओ सारे रल के प्यार दे नाल इस पंक्ति नू गाइए, अगा फिर अज दी इस विचार चो असी गुरबाणी दे व्यू पॉइंट दे विचों ए लभीए कि सुख किस तरह मिलता है। आओ सारे रल के गाइए।

तंदुरुस्त हाँ ते गुरबाणी गाउण तुसी क्यों गुरेज करदे हां। इन्हां नूं जदों खुद भी गावांगे ते मन उत्ते असर होएगा। कीर्तन एक मैडिटेटिवली करना चाहिदा। वी मस्ट इनवॉल्व अवर सेल्फ डीपली इन कीर्तन। आओ रल के गाइए ताकि ये मैसेज साडे अंदर जाए, साडी जिंदगी का ये अंग हिस्सा बने।

द्वारे द्वारे भटकता फिरदा है, क्यों थां थां ते भटकता फिरदा है, तेरा मन किते नहीं टिकदा। एक गुरु नानक दे चरण फड़ लै, एक दा दर मल के बह जा, तेरे लोक परलोक दे पड़दे गुरु आप ढकेगा। जिवें नदी दे किनारे ते अनेक बेड़ियां खड़ोतियां हन, बहुत बेड़ियां होंदियां हन, पर श्रद्धा और सिदक दे नाल किसे एक बेड़ी ते बह जा, वो पार करन दे समर्थ है। सारे ही दुनिया दे धर्म सत्कार योग ने पार करन दे समर्थ ने। जो भी कोई किसे दा धर्म है, अपने गुरु दा आशरा लैके, गुरु दी ओट लैके एक थां ते बह जावे, फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज संवारे। फिर होके डोलना छड़ के, पटकना छड़ के एक दे दर ते बह जा, गुरु तेरे सारे ही कार्ज संवारेगा। आ वेखदे किवें जेड़ा पशु किले ते नहीं बद्धा हुंदा, थां थां ते खुरलियां विच मुंह मारदा ते छोटियां दी मार खांदा, कोई लिहाज नहीं करदा। थां थां ते जेड़ा कुत्ता भटकदा फिरदा, डोलदा फिरदा, उनू भी लोग पत्थर मार मार के जख्मी कर देंदे हन, पर जेड़ा मालिक दा हो जांदा, स्वामी को ग्रह जो सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। जेड़ा कूकर मालिक दे दर ते बैठा है, ओदे आश्रे ते बैठा है, मालिक उसनू प्यार भी देंदा है, समय सिर टुकड़ा भी सुटदा है, जो आप खांदा है उसनू भी देंदा है। ते जे थां थां ते भटकन वाला कोई होवे तां कितों भी कुछ नहीं मिलदा। इस लई हजूर कहंदे हन, द्वारे द्वार स्वान जो डोलत, ए लोभी बंदे थां थां ते तू भटकदा फिरना, हर एक दी खुशामत करना, किवें चार पैसे नसीब हो जान। ओ देण वाला तां निरंकार है, ते तू बंदियां पासों मंग रहे है। ए संसार तां ऐसा है जिसनू तू पानी पिलाया, जिसने तैनू पानी भी पिलाया ना, वो तेरे कोलों दुध दी इच्छा रखदा। ये इतना मतबली संसार है, किसे ने जे तैनू पानी भी पिलाया ना, दुध दी इच्छा रखेगा। इसलिए उस निरंकार दा आसरा लै।

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद ला हां। गुरु की बाणी कह रही है कि ऐ मनुख तू अमोलक हीरे लाला तो भी महंगे अपने श्वास धंधियां विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी दियाई हन, जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे, किते कोई होर ना ले जावे, किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है, क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके ले जाए, रात नू नींद नहीं। सद भावना रखन वाला उस मालक दे हुक्म विच रहन वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है अपनी उठदा है, पर धनवान बंदे नू नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना ले जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया, काच बादरे लाल खोई है तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के, ते दुनियावी पत्थरां नू खरीद के अपने आप नू बड़ा धनवान समझना है, बड़ा बलवान समझना है भाई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार हुंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चलिया, उसे वेले तोड़ ली। कबीर जी वेख के हैरान हो गए, आख्या कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। की लै गया भाई नाल की जाएगा, हजूर कहंदे नाल इना जेड़े अमोलक श्वास तेरे हन इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा, ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन बड़ा अमीर सी, हजूर कहन लगे नाल ता एक सुई भी नहीं जानी ते तू इना धन कट्ठा करी फिर दे। कहने लगा महाराज कृपा करो मैं बड़ी औखी कमाई कीती है ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल ले जावा। हजूर कहन लगे भाई नाल ता ले जा सकना है तू जे साडे आखे लगे, महाराज हुक्म करो। कहन लगे जितनी माया कठी कीती है लोड़ बंदा नू वंड दे उदे नाम ते ते तेरे नाल चली जाएगी। उच्चारण करो श्री, इसलिए हजूर बख्शिश कर दिया ओ मित्रा धन ता तू नाम दा कठा करना सी ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा, तैनू सोती नहीं है कि इना अमोलक श्वासा नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

0: कहूँ महाराजन से छिन छिन लेतहु, कहूँ बेदरीत कहूँ तस विपरीत कहूँ ते गुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो।
1: ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों ते सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा, कतों अचेत होके सुत्ता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा, कहूं महाराजियां नूं दान देंदा फिरदा ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजियां कोलों धरती खो लैंदा, किते ओ वेद दा रूप बन जांदा, किते ओ तिन्ना गुणा दा रूप बन जांदा, किते ओ सर्व गुणा दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेडे जागदी रूप जागदी जोत है, ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहिब विखे सुशोभित हन। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाणा जो महाराज साहिब जी दा असल अस्थान है, उत्थे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि